0: 96 Oasis Smile Medical Tuhadi Sehat Sadi Zimmewari 587-617-4696 कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावा ले पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनिया नाल काम करदे हन और जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
1: रेडियो सुरसंगम की जानिब से आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं जैसा कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले जानते हैं कि हर पीर के दिन हम इंटरनेशनल या वर्ल्ड न्यूज के साथ अपने सुनने वालों को ताजा तरीन खबरें पहुंचाते हैं लेकिन साथ ही साथ हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के एक सेगमेंट के अंदर जो भी कैलगरी में इवेंट होने जा रहे होते हैं तो उन शख्सियात को उन एसोसिएशंस के नुमाइंदगान को यहाँ बुलाते हैं और उनके हवाले से जो है प्रोग्राम के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये अगस्त का महीना जैसे कि आपके इल्म में है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है यौम आज़ादी मनाया जाता है तो इंडियन कम्युनिटी भी बहुत फाल होती है और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी। तो इस साल आज हमारे स्टूडियो के अंदर जो मेहमान मौजूद हैं वो पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन के अहदेदारान हैं जिनमें उनके सदर जो है अजहर उजरा साहब जनरल सेक्रेटरी नुमान मुश्ताक साहब और नायब सदर हसन नवाब साहब यहाँ मौजूद हैं। ये 14 अगस्त को जो प्रेरी पार्क में प्रोग्राम होने जा रहा है यौम आज़ादी का उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे तो हम अपने स्टूडियो में मैं अपनी जानिब से अमरत बरार और रेडियो सुरसंगम की जानिब से आपको खुश आमदेद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आज़र मुजरा साहब से जो पीसीए के सदर हैं हमें हमारे सुनने वालों और देखने वालों को बताएं कि 14 अगस्त को जो प्रेरी पार्क में इवेंट होने जा रहा है वो कहाँ उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं और ये इवेंट किस अंदाज में मुनक्किद किया जाएगा इस साल।
2: अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, थैंक यू वेरी मच। हमें तो पता ही नहीं था कि आप भी रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ साथ सुरसंगम का बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ये जो आप कह रहे हैं 14 अगस्त का इंशाल्लाह ये फ्राइडे को हो रहा है 14 अगस्त स्टार्ट होगा ऑन 3 o'clock ऑनवर्ड 10 o'clock टिल 10 o'clock। तो इसमें काफी डिग्निटी भी आ रहे हैं और साहब हम अपनी कम्युनिटी को भी बुला रहे हैं, इनविटेशन भी दे रहे हैं और साहब आपके तवसुस से सब दोस्तों को और बहन भाइयों को कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट डे है 79 इंडिपेंडेंट डे है और इसमें सब शामिल हों, आप पार्टिसिपेट करें, आप आए, हमें खिदमत का मौका दें। इंशाल्लाह जितना भी हम कर सकते हैं हम करेंगे कम्युनिटी के लिहाज से, जो भी एक्टिविटीज हैं काफी हो रही है। बाकी जो है सारा जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जब हम आए थे तो हमारे अकाउंट थोड़े से कम थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खास करके हसन भाई और नुमान भाई और बाकी एग्जीक्यूटिव काफी काम कर रही है इसके ऊपर और इस वक्त माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में है। अच्छा। पिछले 4-5 दिन से हम लगे हुए हैं और
1: हसन भाई हसन नवाब जो है ना कैलगरी की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं और मजहबी हवालों से भी समाजी हवालों से बड़ा इनका मुकाम है। हसन भाई इस जो मौजूदा काबीना है जो कैबिनेट है एग्जीक्यूटिव बोर्ड है पीसीए का उसमें नायब सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हसन भाई आप हमें ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम जो जैसे अजहर भाई ने बताया कि 3 बजे शुरू होगा रात 10-11 बजे के करीब जारी रहेगा तो इसमें जो एक हिस्सा जो है मौसीकी का है जो 5 या 6 बजे के बाद आप लोगों का प्लान है तो उसके अंदर कौन फनकार जो है शिरकत कर रहेंगे और जो है उसमें लोकल भी हैं कुछ टोरंटो से भी मेहमान गुलूकार आ रहे हैं तो जरा उनके हवाले से हमें सुनने वालों देखने वालों को बताइए।
3: शुक्रिया भाई सत्संगों के रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया हमारी पाकिस्तान कनेक्शन को। जैसा आप सबके इल्म है कि 14 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंट डे है पाकिस्तान का और वो हम रेडियो 5 में उसको मना रहे हैं उसका जश्न आजादी हमने इसको मेला नाम दिया है और जाहिर है कि आपको बताया कि जो प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के वॉलंटियर इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है और बहुत सों की मदद दरकार होती है। जैसे बेहद साहब ने बताया कि हमें जाहिर है कि हर प्रोग्राम के लिए फंड्स की बहुत जरूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जाने वाले दोस्त हैं जिनके साथ हम लोग गए उन्हें हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और एक अच्छा ताउन कर रहे हैं और उसमें हम मुतमिन हो रहे हैं। तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, दायरा हॉल पहले बुक हो चुका था, जितने टेंट वगैरह स्टे हो चुके थे जो और स्टॉल लग रहे हैं मुख्तलिफ आपके

0: नहीं, मैं वो भी मतलब है कि सब बुक हो चुके हैं, इन्विटेशन जैसे बताया लोगों को मिल चुका है, और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों में सबको आना चाहिए। किसी भी मुल्क की जब आजादी का दिन मनाया जाता है तो वो उसमें मैं समझता हूं कि उन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए बहुत ज्यादा। तो मैं दावा देता हूं तमाम उन लोगों को जो सीनियर हैं या बुजुर्ग हैं, अपनी फैमिली साथ आए और ये देखें, और उन लोगों का बहुत मशकूर मनमून है बहुत ज्यादा हम लोग शकील भाई के जीनी नहीं सोचता हूँ कहता है कि एक वॉलंटियर वर्क पैसे का जितना वो हालात नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की गई, काम हमें एक टास्क दिया गया है तो हम काम कर रहे हैं। साल का ये बड़ा प्रोग्राम होता है, हर साल कर लीजिएगा तो वो एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, बाकी सारे छोटे प्रोग्राम होते थे और उसके अलावा कर द्वारा बुलाएंगे एंड पीसे के बारे में और बताएंगे आपको। तो यही पैगाम है शकील भाई कि जो गुलकार आ रहे हैं वो हमने इस दफा ये फैसला किया पूरी टीम ने एग्जीक्यूटिव ने कि मोहसिन शौकत को बुलाया जो टोरंटो सर है, शौकत अली के बेटे, वो एक तो मिली ने भी बहुत अच्छे गाते हैं, इनके वालिद साहब के भी अपने गाते हैं और गाने वगैरह भी गाते हैं, तो वो आ रहे हैं। फिर लोकल राजा भाई और जमान राजा हैं, उसके अलावा एक आध किसी बहन से बात ही है, एक आध कोई यंग लड़का भी है, कल बात अदर भाई और बात कर रहे थे जो लड़की यंग लड़के का जहन में नाम नहीं आ रहा अभी वगैरह मेरे, लेकिन वो तीन पहले से तय है तो वो गुलकार है हमारे और शाम का प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम जारे के खुशी का है, उसमें जारे के जो डिग्रीज आ रही है वो तखी करेंगी, हमारे एंथम होंगे बाकायदा पाकिस्तान का और कनाडा का और तराने होंगे, उसके बाद कल्चर वाइज हम बताएंगे कि जो चार सूबे उनकी कल्चर के वाइज हमने जो कोशिश की है तैयारी में कोशिश की है, दरख्वास्त भी की है कि सिंध का कल्चर, पंजाब का कल्चर, पख्तून का, बलूचिस्तान का कल्चर बताएं उसमें, वो भी एक छोट प्रोग्राम है। उसके अलावा कुछ स्टॉल वगैरह खाने पीने के वो चलता रहेगा, कुछ बहनों ने जो उनकी मदद करें लोग आके जो कपड़ों का है, चूड़ियों का स्टॉल है और फेस पेंटिंग वगैरह वहाँ हो रही है, तो मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए, अब बच्चों के लिए बहुत बड़ा आपको बताया कि हमने जम्पिंग कैंसल लिया है कि छोटे बच्चे आए और वो इंजॉय करें और सिक्योरिटी वगैरह बंदोबस्त भी हमारा है, सिक्योरिटी कंपनी से 5 सिक्योरिटी ऑफिसर वहां होंगे जो सब चीजों में वॉच कर रहे होंगे, और हम इस वक्त सिटी ऑफ कलगरी का बहुत मशहूर है मनमोहन है कि उन्होंने ये हमें भाग दिया और जो सहूलत हमें दे रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स।
1: थैंक यू सो मच आप सबका इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे इस कंट्री में कनाडा में हम सब लोग आए अपने डिफरेंट मुल्कों से और अपने कल्चर्स, अपने सभ्यता को साथ लेकर यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, तो अपने इस प्रोग्राम में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो वो लोग जो कि पाकिस्तान से नहीं हैं, क्या वो भी इनवाइटेड हैं और वो आकर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं?
2: डेफिनेटली भाईजान, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। व्हाई नॉट, क्योंकि हम यहाँ पे एथनिक कम्युनिटी है, यहाँ पे हम लार्ज ऑफ कम्युनिटी जो है ना वो सारे आए हुए हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, इवन दो के जो साल पहले भी आए हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, तो हम सबको वेलकम करते हैं। व्हाई नॉट, क्योंकि हम जाते हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन का मतलब ये है कि हम किसी का भी हो हम वहां पे भी जाते हैं और उनको भी हम दावत देते हैं, वो भी आते हैं, सबके लिए ये ओपन है, एनीवन दे कैन कम, क्योंकि ये सेलिब्रेशन डे है, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि स्पेशली पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है ऑब्वियसली वो तो सब आएंगे, लेकिन जो एथनिक कम्युनिटी जितनी भी है सब आए, सब हम सबको दावत देते हैं। प्लीज
3: शुक्रिया अजहर साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ और हसन भाई ने बताया। अब हम बात गुफ्तगू करेंगे नुमान मुश्ताक से कि जो पीसीए के जो है मौजूदा जनरल सेक्रेटरी है। नुमान साहब, आप ये बताएं कि अजहर भाई ने भी और हसन भाई ने भी तो प्रोग्राम में कि क्या एक्टिविटीज होंगी म्यूजिक से रिलेटेड, तो क्या इस प्रोग्राम इस इवेंट के अंदर जो 14 अगस्त को हो रहा है उसके अंदर जो है ना स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, बच्चों की एक्टिविटीज क्या होंगी, फैमिली इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो इस पे जरा सा रोशनी डालें ताकि हमारे सुनने वालों को पता चल सके कि आपकी तैयारियां किस मरहले पे और किस अंदाज में आप लोगों ने भरपूर मेहनत करके इस प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है।
4: अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आपका और सुर संगम रेडियो का थैंक यू,
3: अमृत भाई
4: का भी, तो हाँ जी भाई जान का भी, एक्चुअली आपने चांस दिया हमें इधर बुलाया, थोड़ा चीजें कम्युनिटी तक हमारा मैसेज चला जाए, आपसे बेहतर वैसे कोई नहीं जानता क्योंकि आप खुद एग्जेक्टिव रह चुके हैं और बड़े एक्टिव, माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट एग्जेक्टिव पीसीए के आप रह चुके हैं, तो

0: और मुझे याद है कि लास्ट ईयर 14 अगस्त का आई थिंक 70% मैनेजमेंट आपके हाथ में थी। बस सर हम ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहला तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का, क्योंकि हर चीज फाइनेंस से स्टार्ट होती है, तो फाइनेंशियली जो हमारे बिजनेस है वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। उसमें से जो स्पॉन्सर हैं बड़े प्लैटिनम है, कोई गोल्ड है, हमारे डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं, तो सबसे पहले शुक्रिया उनका, क्योंकि उनकी वजह से ये प्रोग्राम आज तक जा रहा है।
1: सही बात।
0: तो उसमें जो आपने क्वेश्चन किया जी, बच्चों के लिए बाउंसी कैसल होगा उधर,
1: गुड,
0: फेस पेंटिंग होगी,
1: गुड,
0: और थोड़ी छोटी मोटी जो है ना, क्योंकि ओपन एरिया है तो एक्टिविटीज बच्चों के लिए होगी, और स्टॉल्स जो है ना, यूजली आपको पता है कि स्टॉल्स इस दफा एक्चुअली बहुत ज्यादा हमें थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई है कि स्टॉल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो है ना ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूजली होता क्या है कि 12 स्टॉल्स जो है ना वो लगते हैं, 12 से 13 स्टॉल, तो सो फार बुकिंग्स बहुत ज्यादा और मुझे स्टिल बहुत कॉल्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है। और इसमें स्टॉल्स में कपड़ों के होंगे, कुछ दूसरा फूड वाले होंगे, चाय वाले होंगे, खाने वाले मिक्स स्टॉल होंगे, तो लेकिन इस दफा एक्सपेक्टेड है कि कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़े लार्जर स्केल पे जो है ना पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि आई थिंक साल का सबसे बड़ा इवेंट है, और
1: बिल्कुल
0: जब से ये आउटडोर स्टार्ट हुआ ना तो ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि समर में समझे कि ये जो है ना
1: बड़ी एक्टिविटी
0: सबसे है। तो बाकी हम ट्राई कर रहे हैं कि और चीजें कुछ ऐड करने की, जिस तरह अजहर भाई बल्कि रबते कर रहे थे एक दो, जो है ना इसको जितना हसन भाई भी के इंटरेस्टिंग हो जाए, अगर इसमें ज्यादा एक्टिविटीज हम रखें, बाकी हमारे जो है ना डिग्निटरीज कम्युनिटी से वो आएंगे, केक कटिंग होगी, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होगी।
1: वेरी गुड,
0: इंशाल्लाह।
1: बहुत नहीं, बहुत बहुत बेचैनी से जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी इस इवेंट का इंतजार करती है, और इसमें कोई शक नहीं है बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है बैक एंड के अंदर, लेकिन वो सारा ये आपकी जो है ना वसूली उस दिन हो जाती है जब आपका प्रोग्राम या पीसीए का प्रोग्राम कामयाब हो जाता है, या किसी भी अंजुमन का, खासतौर से प्रेरी पार्क के अंदर, क्योंकि फैमिलीज जो है पूरा साल इंतजार करती हैं कि भाई उनकी इंडिपेंडेंस डे या उनका कल्चरल डे आता है कोई, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अब हम ये बताएं कि इसके अंदर जो खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, कपड़ों के भी हैं, आपने बताया, तो फेस पेंटिंग बच्चों के लिए का इंतजाम आप लोगों ने किया, बाउंसिंग कैसल, क्योंकि फैमिली जितना ज्यादा एंजॉय कर सकती है वो जो है वो आए, और ये क्योंकि इस साल जुमे का दिन है तो 3 बजे आपने रखा है कि वो प्रोग्राम 3 बजे शुरू होगा, रात 10-11 बजे तक। हाँ, तो हमारे सुनने वालों और देखने वालों को ये बताएं कि जो है वहां पे हसन भाई ने जैसे कहा सिक्योरिटी का आप लोगों ने बड़ा अच्छा इंतजाम इस दफा किया, पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, तो सारी जो फैमिली है सेफ और सिक्योर महसूस कर सकें, और आपके पास वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी टीम है जो खास तौर से सफाई का ख्याल रखे उधर
0: जी,
1: कि ये बड़ा हमारे लिए जो ना मुश्किल सूरत हाल किसी भी एसोसिएशन के लिए बन जाती है, और हमारा जब हम एग्जीक्यूटिव थे हमारे लिए भी मुश्किल बनी, तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि आपकी एक वॉलंटियर की बहुत बड़ी टीम आप लोगों ने अरेंज की है कि जो स्पेशली सफाई सुथराई और सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे भी लोगों की तवज्जो रखे कि कोई ऐसी जो ना नाखुशगवार वाकया ना हो।
0: सबसे एक्चुअली आपको रिसेंटली पता है जो कम्युनिटी इवेंट्स हुए ना प्राइवेट पार्क में, ये सफाई की सबसे बड़ी कंप्लेन सफाई की है, तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली, क्योंकि ये मिलजुल के होता है,
1: बिल्कुल,
0: ये इंडिपेंडेंट डे सारी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा अच्छा बड़ा इवेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी कम्युनिटी से, सो हमने बिन इस दफा अरेंज की है स्पेशल, और छोटे बिन जो है ना वो हम हर एरिया में रखेंगे, यानी कि एक्सेस, हाँ एक्सेस रखेंगे बहुत इजी के, अब गार्बेज आपको कहीं फ्लोर ग्राउंड में फेंकना ना पड़े, तो लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल हमारी कम्युनिटी की बनती है, क्योंकि सफाई सिर्फ ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम्युनिटी से कि प्लीज थोड़ा सा ना ध्यान रखें, अगर वॉलंटियरली भी मैं कहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो कहीं, तो वैसे भी मैं यानी कि 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो
1: हमारा फर्ज
0: बनता है कि अगर कोई इस तरह चीज देखे नीचे पड़ी तो उठा के उसको गार्बेज में बिन में फेंक दें, तो उसके हवाले से मैं मेरी रिक्वेस्ट ये सारी कम्युनिटी से कि प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये सारे काम मिलजुल के रल मिल के ही होते हैं, और अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करे तो फिर पूरी कम्युनिटी पे वो धब्बा लगता है या बदनाम होती है। हसन भाई ये बताएं, ये जो फनकार आ रहे हैं शौकत मोहसिन शौकत अली, तो ये पीसीए के प्रोग्रामों में पहले भी शिरकत कर चुके हैं, पीसीए ने इनको इन्वाइट भी किया।

0: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम्युनिटी को, पीसीए के दो पेज हैं, दोनों पे आप देखेंगे तो उधर हमने स्पॉन्सरशिप के एड ऑलरेडी चलाए हुए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ उस पर, तो जितने बिजनेस हैं मेरी कम्युनिटी से बड़ी काइंडली जो है ना रिक्वेस्ट है कुछ उन बिजनेस को सपोर्ट करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें एक दूसरे के साथ चलना है।
1: बिल्कुल।
0: तो स्पॉन्सर्स के लिए हसन भाई का नंबर भी है और मेरा नंबर भी है, वो दोनों नंबर दिए किसी ने भी। बिल्कुल स्टिल कॉल्स आ रही हैं, अभी आपके साथ जब मैं बात कर रहा था तो वो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए।
1: बहुत अच्छी बात
0: इस दफा, लेकिन इस दफा एक बड़ी अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह चलिए हमने अप्रोच भी किया, लेकिन कुछ लोगों का भी जज्बा है को जो लोग
2: स्पॉन्सर
0: कर रहे हैं लोग जो।
1: नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है और ये सारी चीजें जो है ना,
0: सॉरी टू कट यू ऑफ, तो इस दफा हम ट्राई करेंगे हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं हम सबको देंगे, उनकी रिकॉग्निशन उधर भी होगी, पीसी पेज पे भी हो रही है, डिजिटल स्क्रीन लगेगी उधर स्टेज के पीछे, तो उधर भी उस दिन आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी पीसीए के। उसके बाद इवन 14 अगस्त के बाद भी हम इनको अप्रिशिएट करेंगे जितने बिजनेस हमें सपोर्ट।
1: नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल बैकबोन होते हैं कोई भी स्पॉन्सर जो है किसी भी एसोसिएशन के, और हमें सबको जो है ना उनकी जो है ना सपोर्ट करना चाहिए, वहीं से शॉपिंग करनी चाहिए, उन्हीं के साथ सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहिए। अमृत जी कुछ मजीद कहना चाहें या पूछना चाहें?
3: बस यही है कि सॉरी मेरे
1: ना गले की
3: प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए
1: हसन भाई कोई आखिरी
3: हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करी और हमारे ऑडियंस के लिए लिसनर्स के लिए इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी एंड टुडे इस प्रोग्राम?
4: देखिए हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव ने अभी बताया सफाफ से जो मौजूद है तीनों, और मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि किसी प्रोग्राम की कामयाबी आवाम होती है, तो जितना बंदोश किया जा रहा है जितना प्रोग्राम अच्छा किया रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, अपने बच्चों को बुजुर्गों को बड़ों को लेके आए, और अपने हाथ में अगर परचम लेके आए पाकिस्तान के तो और अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे अदब भाई ने कहा और जैसे नुमान भाई ने कहा कि हम उनमें बाद भी सपोर्ट करेंगे और अभी भी सपोर्ट करते हैं, और उनके मशकूर एक बार फिर हम मशकूर उनके बहुत तमाम फंसों की हकीकत है कि जहां जहां हम गए उन्होंने हमें भरपूर तमाम किया, और आधे ज्यादा कलेक्शन हो चुका है और जो कमिटमेंट है इंशाल्लाह वो सारी सब पूरी करेंगे, सारे अच्छे लोग हैं वो, और सारे के मैंने जज्बा देखा उनका। मैं यही दरख्वास्त कर आखिर में कि प्लीज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और यूनिटी दिखाएं। देखिए पाकिस्तान का ट्रेडिशन जो है ना वो 60 साल पुरानी तरदी में ठीक है कि माशाल्लाह यहाँ पर और भी बहुत सारी एनजीओ ऐसी बन गई है, बहुत लोग काम करते हैं, कलकत्ता वाइन सिटी है जो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर हमें डोनेशन देते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और अल्लाह उनको दे, सारे लोग नहीं काम करते हैं चैरिटी करते हैं बहुत। मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज पीसीए जो आपकी बड़ी सबसे बड़ी तंजीम है मदर के नाम ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, प्लीज इसको उसी तरह देखें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और आए और हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं इंशाल्लाह हम आपको बाद में बताएंगे। दरख्वास्त यही है कि आज ज्यादा आए बस, और तो और सबको शुक्रिया एक बार, थैंक यू।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और अपने प्रोग्राम का पीसीए के 14 अगस्त के प्रोग्राम के हवाले से। अदर भाई कुछ कहना चाहें?
2: हाँ शकील भाई थैंक यू। लास्ट जो है ना हम सुरसंगम का रेडियो सुरसंगम का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हमें उन्होंने बुलाया, और जितने भी सुनने वाले हैं सुरसंगम को मेरी रिक्वेस्ट है कि सुरसंगम को सपोर्ट करें, रेडियो सुरसंगम को सपोर्ट करें और ये ऊपर से ऊपर जाए।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि ये इन्होंने हम फर्स्ट ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपके रेडियो पे कर रहे हैं, अभी के कहीं पे नहीं गए
1: जी, थैंक यू इसके लिए भी। हाँ बिल्कुल,
2: तो ये आपकी बहुत बहुत रेडियो सुरसंगम की जरा नवाजी। और शकील भाई आप क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा रहे हैं आपकी भी मेहरबानी, आपने हमें टाइम लिया सच्ची, ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उसके बाद हाँ हमारे जो स्पॉन्सर्स है ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम जिसके पास भी गए ना उन्होंने यकीन करेंगे दिल खुला करके कहा कि कुछ दोस्तों ने चेक बुक दे दी कि ये लिख लो भाई आप जो आप आए हैं हमारे पास आप जितनी भी अमाउंट डालनी डाल दो,
1: बड़ी बात
2: इतना उन्होंने हमें हौसला दिया, और इस उसकी वजह से हम जो है ना आप आज खुश होकर बैठे हुए हैं कि यार इंशाल्लाह हमारा जो एक्सपेंस है वो कवर हो
1: गया। बस सही, अच्छी बात है, यही कम्युनिटी बिजनेस की यही होती है कि वो अपनी एसोसिएशन को खासतौर से पीसीए जैसे हसन भाई ने बताया कि सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी अंजुमनें बन गई लेकिन पीसीए की मुकाम को कोई जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता, और जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने काम किया है पिछले 50 सालों में, तो जब इतनी पुरानी अंजुमन हो तो लोग

0: उसको जो है ना वैल्यू भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं. आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. और ये स्टूडियो रेडियो सरसलम आप लोगों के लिए हाजिर है. फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटी, कोई प्रोग्राम हो, उसकी अनाउंसमेंट हो, उसकी तशहीर हो, वो हमारे दरवाजे रेडियो सरसलम आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे.
1: थैंक यू शकील भाई आपका, और आपका स्पेशली थैंक यू कि आप इस दफा एग्जीक्यूटिव नहीं है लेकिन आप हमारी बड़ी हेल्प कर रहे हैं. इसके अरेंजमेंट में जी शकील भाई हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जिससे स्पेशली थैंक यू आप और रेडियो सरसलम का.
2: थैंक यू सर. दोस्तों मैं कहूँगा हिस्सा है, कमेटी इंतजार है, कोई और काम कर रहे हैं माशाल्लाह.
3: तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर. एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. जाइए कहीं नहीं, सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर.
4: हाई क्वालिटी वाली फोटो चाहिए ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दिया दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जा सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन ता जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जा आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पला नू कैद करते हुए एक फोटो एक वार.
5: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
6: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा. कीमतां कट ते क्वालिटी A1.
5: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर.
6: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां. हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक.
5: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव.
6: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू.
5: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड.
6: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर.
5: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे.
6: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी.
5: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
6: 403-835-2222. रोड ते नवा ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है. होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है.
4: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो. ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया. ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो. तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उहनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन. बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208.
0: सो दोस्तों आज का प्रोग्राम हम लोग आपके पास लेके आ पाए हैं हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं हमारे अपने पंजाब इंश्योरेंस. इफ यू लुकिंग फॉर रिलायबल इंश्योरेंस सर्विसेज कॉन्टैक्ट हरप्रीतर सिद्धू एट पंजाब इंश्योरेंस. दे ऑफर ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस एंड मॉर्गेज इंश्योरेंस. उनका फोन नंबर 403-404-3500. मदर इंडिया रेस्टोरेंट सर्विंग ऑथेंटिक नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन 7 days a week 24 hours a day. आप उनसे रब्ता कर सकते हैं 403-936-7777 पर. पिक्सल फोटो स्टूडियो लोकेटेड एट सवाना बाजार इन नॉर्थ ईस्ट. पिक्सल फोटो स्टूडियो ऑफर्स पासपोर्ट फोटोज फ्रॉम जस्ट $7. तो आप उनसे फैमिली फोटोज, बेबी फोटोज, बिजनेस

0: पोर्ट्रेट्स भी बनवा सकते हैं विद हाई क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग. उनका फोन नंबर है 4039470060. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट कैलगरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मर्सिडीज बेंस डीलरशिप इन कैनेडा. प्लीज आप विजिट करें और मिलें गौरव शर्मा जी को अगर आप मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हैं. और उनका फोन नंबर है 4039036757. Oasis Smile Medical is open in the Sunridge area of Northeast Calgary. They have a team of experienced doctors and ready to care for you. So, अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, new patients वो लोग ले रहे हैं, उनका phone number है 587-617-4696. YBC Home Care, वीरपाल कौर दत्त जी और उनकी टीम आपके लिए तैयार. अगर आपके पास इफ यू हैव एल्डरली फैमिली मेंबर्स एट होम हु नीड केयर एंड असिस्टेंस कॉन्टैक्ट वीरपाल कौर दत्त जी एट 825-760-0983. सोनिक इंश्योरेंस, अगर आप बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स एल्बर्टा में चाहते हैं तो प्लीज मानोज पहुजा जी से बातचीत करें 587-832-1208. एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर. सुनते रहिए रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर. आई एम रियली सॉरी, आई हैड अ सर्जरी इन माय माउथ सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक लाउडली. सो मैं अपने सुनने वालों से माफी चाहता हूँ. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
1: कैलगरी वासियों, की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार. ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन. चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन. अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ. इत्थे वॉक-इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम. फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ. असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक. ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696. ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी. 587-617-4696.
2: ओहो, आज फेर नी लोड मिलया.
1: की होया?
2: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नी मिल होना दो दिन.
1: ओहो, रह गए ना फेर पिछे. मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है. तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको. फोन नंबर है मानस पहुजा 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001. सोनिक इंश्योरेंस.
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो, हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया. कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल. पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम. सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757. मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स.

0: ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਪਹੂਜਾ 5878732108 ਜਾਂ ਰਮਨ ਵੜੈਚ 7807530001 ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
1: वेलकम बैक टू आपकी आवाज प्रोग्राम रेडियो सुरसंगम. अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम आम तौर पे कनाडा या अल्बर्टा या कैलगरी में होने वाले कुछ वाकयात के ऊपर गुफ्तगुशुनीद करते हैं या डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि भाई किस तरह से जो है ना मामला हमारे कनाडा के. अमृत जी, हमें अंदाजा है कि आपकी जो है माउथ की सर्जरी हुई है, लेकिन फिर भी आपने बड़ी हिम्मत करके आज प्रोग्राम को जो कंडक्ट करने की कोशिश की है. तो क्या ख्याल है, आज हम कैनेडियन इमिग्रेशन की ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करें?
2: जी शकील भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हर तरफ से जो है हमारे को बहुत ही अच्छी नहीं कह सकता, बुरी खबरें आ रही हैं और जगह जगह, चाहे आप ओटावा कहिए या जहां पे भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं हमारे सियासतदानों की, वहां पर यही चल रहा है कि ये फ्लॉ जो है ये पहले नहीं पकड़ा गया और इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता था. और ये स्पेशली सिर्फ हम बात स्टूडेंट्स को लेके नहीं कर रहे, बट इसके अलावा भी हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं. अगेन ये हमारा अपना नज़रिया है, इसके अंदर किसी और की मैं शिरकत या और का लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं काउंट करना चाहूंगा. क्यों शकील भाई?
1: बिल्कुल सही,
2: ये सिर्फ डिस्कशन लेवल के लिए
1: बिल्कुल
2: है.
1: और इसकी जो जिसकी हम कहते हैं कि जो डिस्क्लेमर है, ये कोई ये किसी एक पर्टिकुलर वाकये के
2: हवाले से नहीं है,
1: किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के हवाले से नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम महसूस कर रहे हैं एज ए कैनेडियन कि पिछले खास तौर से 8 सालों से और बिलखसूस पिछले 5 सालों से राइट आफ्टर द कोविड, जो इमिग्रेशन में जो जिस अंदाज में जो है ना लोगों को यहाँ आने के मौके दिए गए हैं, और वो उससे बहुत सारी बेचैनी पूरे कनाडा में भर में फैली हुई है. और आए दिन हम वक्फे से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, खबरों में ये नुमाया रहती हैं चीजें कि इन खामियों की वजह से, जिसमें ये नहीं कि जो है किसी एक फरीक की गलती है, उसके अंदर बहुत मल्टी लेवल जो है ना गलतियां हुई हैं. अब इतना अर्सा गुजरने के बाद गवर्नमेंट को खुद को एहसास हो रहा है कि ये हमसे गलतियां हुई हैं और वो उसको जो है ना बेहतर करने की या उसको रीवैम्पिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजाय ऐसा महसूस होता है कि अब खासी देर हो चुकी है और इन गलतियों को बेहतर करने के जो मौके उस वक्त थे उस वक्त शायद कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको इस अंदाज में नहीं कर सकी. लेकिन ओवरऑल इमिग्रेशन का मुद्दा लेके सारे कनाडा के अंदर, इवन वो जो वाइज स्ट्रीम कैनेडियंस हैं, ख्वा वो जो है जो मेन स्ट्रीम कैनेडियन है, मेरा मतलब है कि जो भली 50 साल पहले यहाँ या उनके थर्ड जनरेशन हो या फोर्थ जनरेशन हो, वो भी इस चीज को महसूस कर रही है कि ये वो कैनेडा नहीं है जो आज से 20 साल पहले था. और इन्हीं सारे वाकयात को देखते हुए वो महसूस करते हैं कि जनाब अगले 20 सालों में कनाडा की क्या सूरत हाल होगी अगर इस मास इमिग्रेशन पे कंट्रोल नहीं किया गया और उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में कनाडा की सूरत हाल जो है खराब होने के मजीद इम्कान है. और हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि किस तरह से जो ना बेहंगम या कोई रुकावट के बगैर लोगों ने क्राइम में भी मुलविस होना शुरू किया और जो है लोगों की जीनी जिंदगी जीना हराम करने की कोशिश की. लेकिन अब शायद महसूस होता है कि गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास हो चुका है, ख्वाह वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कि हमें इस पे कंट्रोल करना है और इसको बेहतर बनाना है. क्या कहते हैं?
2: नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील भाई, क्योंकि ये जो शुरुआत है, अगेन मैं 5 साल पहले जाऊंगा, 6 साल पहले, और वहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे एक लूप होल को लेते हुए बहुत सारे ऐसे लूप होल्स ओपन हुए हमारे इमिग्रेशन में, जहां पर लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया और उसके साथ साथ जो लोग डिजर्व नहीं करते थे या जो लोग एक डिफरेंट यू नो जहन के तहत यहां पर आना चाहते थे, वो भी उस इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू यहां पर आए. और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज कह रही है और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज को सामने लेके आ रहे हैं. तो ये शकील भाई शुरुआत से ही एक

0: जो प्रोग्राम बनाया गया उसके अंदर बहुत लूप होल्स थे, और आज भी जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है जहां पे मैं जितना स्टडी करता हूं और सुनता हूं, अभी भी बहुत लूप होल्स हैं जिसको बंद करने की जरूरत है। लोग कहीं पे कहते हैं या हमारे जो नेतागण हैं वो कह रहे हैं कि जी नौकरियां बहुत हैं, लेकिन आई थिंक अभी भी हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां से पढ़ाई करी है उनके पास नौकरियां नहीं है, वो भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जो वर्क परमिट में है या स्टूडेंट वीजा पे हैं, मैं इवन जो यहां के सिटीजंस हैं
1: लोकल स्टूडेंट्स की बात,
0: उनके पास भी नौकरियां नहीं है। और एक तरफ जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जी बहुत सारी नौकरियां अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर वो नौकरियां हैं सिर्फ जो कि रिलेटेड है अपना लेबर क्लास में, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम है या आपको और कहीं पे जूनियर लेवल पे काम करना पड़ रहा है, तो हाँ शायद वो नौकरियां अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप बात करें जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां से डिग्रियां ली हैं, उनको भी यहां पर नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है। लोग अच्छी अच्छी डिग्रीज लेकर घर पे बैठे हुए हैं, तो पता नहीं कहां पे क्या फ्लॉ है, लेकिन इस फ्लॉ को अब मेरे ख्याल से पकड़ा जा रहा है धीरे धीरे, और शायद कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में हो।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके अंदर एक एक जो मेरा मैंने जो इसकी जो इसकी क्या पोस्टमार्टम कह लें या इस पर थोड़ा सा स्टडी की है, पिछले 15 सालों में खास तौर से कनाडा की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, ठीक है। और कनाडा आने वाले ख्वाह वो रेफ्यूजीज हों, ख्वाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों, ख्वाह वो इमिग्रेंट्स हों या वो विजिटर्स वीजा हों, बहुत बड़ी तादाद में लोगों कनाडा के अंदर मूव हुए। उस हिसाब से शायद कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ना प्रिपेयर नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ सर्विसेज तक प्रोवाइड करने में वो मज़ाक लगता है नाकाम रही है। और जब ये इतनी बड़ी आबादी बढ़ गई तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल से लेके बसों से लेके तालीमी इदारों से लेके हर जगह जो है आपको ना सिर्फ कंपटीशन देखना पड़ता है, बल्कि अगर कहीं पे एक क्लास में 100 स्टूडेंट की गुंजाइश है तो वहाँ 400 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट होती है। तो ये आबादी के एक बढ़ने की एक बड़ी वजह, फिर जो तेजी के साथ पिछले 20 सालों में जो सेकंड जनरेशन जवान होना शुरू हुए, वो लोग जो इमिग्रेंट बन के सन 2000 या 2004 के दरमियान ही आए थे, आज उनकी सेकेंड जनरेशन स्कूल कॉलेज से या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पास आउट होके जॉब की तलाश में, लेकिन नौकरियां या उनके जो है ना उनके हिसाब से जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं और हमारी जो गुजारिश भी है सूबाई गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि भाई वो जो है इस सूरत हाल को बेहतर बनाए, और अगर इस पे आज से भी या एक साल पहले से भी काम शुरू किया गया तो उसका रिजल्ट भी निकलते निकलते टाइम लगता है, तो 2 से 3 साल के बाद उसका रिजल्ट निकलना शुरू होगा। लेकिन अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे और इसका क्रैक डाउन नहीं करेंगे या इसमें बेहतरी नहीं लेके आएंगे तो हालात इससे और ज्यादा अगले 5 सालों में खराब होने के, और उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट होगी जब वो कोई इस पे रिफॉर्म करेगी तो फिर जो है ना कैनेडियंस के अंदर बेचैनी फैलेगी कि जी ये जुल्म हो रहा है। तो बेहतर यह है कि जिस जो इस वक्त गवर्नमेंट है, ख्वाह वो सूबों की हो या फेडरल की है या टेरिटरीज की हो, वो जो है ना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके इस मसले का हल निकाले, और वो हल निकाले कि जो देर पाओ, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म जिसकी जो फायदे हो, ना कि एक शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आप आर्थिक तौर पे इस मसले को दबा दें या उसको खत्म करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल, और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का साथ दें, अगर इनकेस नहीं जॉब मिल पा रही है तो उनको डिप्रेशन में मत जाने दें, उनके साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करें और जल्द न जल्द इसका हल जरूर निकलेगा। बिकॉज अगर हम अपने बच्चों को अभी छोड़ देंगे कि ठीक है भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही तो जाओ, वी डोंट केयर अबाउट यू, तो ये और उनके लिए डिमोरलाइजिंग हो जाएगा और बच्चे किसी गलत राह पे चल पड़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों का साथ दें, उनका हाथ पकड़ के रखें, उनको हर कदम पर सही सलाह दें। बिकॉज अगेन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब किसी ने डिग्री कर ली है शकील भाई तो कॉलेज की, तो हमें लगता है कि नहीं अब वो एक यू नो मुकम्मल इंसान हो गया है और पढ़ाई लिखाई कर ली है तो अब अपने आप ही सब कुछ करेंगे। लेकिन अगेन हमें भी इस उम्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी सुझाव की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखें ये जो आपने बात कही कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो पिछले खास 5 साल का जो हमने डाटा देखा है, हमारे हम डिस्कस करते रहे कि मेंटल हेल्थ से लेके
0: जी
1: और

0: जो आपका जो ड्रग यूज है उसमें किस कदर इजाफा हुआ है। हर दूसरा आदमी किसी न किसी शक्ल में, ख्वा वो किसी भी एज का हो, स्टूडेंट से लेके, वो डिप्रेशन की किसी न किसी मेंटल कैफियत से गिरफ्तार है। और ओवरऑल उसकी जो भी जो फाइनेंशियल जो हार्डशिप है उसने और उसको मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया।
1: बिल्कुल बल्कि
0: जो है वो जॉब्स हो या एजुकेशन हो, आप देखें 5 साल 10 साल 12 साल पहले हमारे कैलगरी में बच्चों को यूएफसी के अंदर एडमिशन मिल जाते थे, अब यूएफसी में एडमिशन लेना या माउंट रॉयल में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, फिर हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरे शहरों में, टोरंटो में या सस्कचवान में, रिजाइना में, बीसी में, दूसरे सूबों में जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, वो वालदेन के ऊपर अलग एक बर्डन, प्लस ये कि स्टूडेंट्स के ऊपर एक अलग प्रेशर। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये कोई नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बड़ी मुस्तैद है और इस मामले पे तवज्जो देना उन्होंने शुरू किया है, और उम्मीद की जा सकती है कि अन करीब कुछ सालों के अंदर, चंद सालों के अंदर अंदर ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ पहुंच जाएगी।
1: शकील भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, मेंटल अगर हम अपने स्टेबिलिटी की बात करें तो कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे खर्च होते हैं उन बच्चों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि मेंटली यू नो अपना एक तो जो खो जाते हैं कि हमें अपना फोकस खो जाते हैं और गलत राह पे चल पड़ते हैं, ड्रग्स में चल पड़ते हैं, तो वो चीज़ को हमें रोकना चाहिए। और आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आप उनका प्लीज साथ दें, उनके साथ जुड़े रहें। हमारी टीम से आपको यही दरख्वास्त है कि अगर कोई मुश्किल आपदा आई है तो उसको साथ मिलकर
0: बिल्कुल
1: उसका सामना करें, ये नहीं कि बच्चे को अकेला छोड़ दें, जिस मर्जी उम्र में हो बच्चा उसका साथ देना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये हमारे सभ्याचार में है, ये हमारे एथिक्स में है, ये हमारे ट्रेडिशंस में है कि हमने बच्चों को या अपने माता पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, तो प्लीज उसको आप याद रखें और उसी की आई थिंक हमारे कल्चर को तभी इतना ऊपर माना जाता है कि हमने हमेशा अपने बुजुर्गों की या अपने बच्चों की हमेशा साथ दिया है। तो अगर आज भी हमारे इस कनाडा में एक ऐसी प्रॉब्लम आई है जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज उनका साथ दें, उनका साथ ना छोड़ें। क्यों शकील भाई?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जाहिर है जब फैमिली सिचुएशन या स्टूडेंट्स की या घर में बच्चों की ऐसी होती है तो कोई एक फर्द नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है ना डिस्टर्ब रहती है
1: जी।
0: और उसके जो है ना बड़े भयानक जो है ना बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं कि आए दिन हम वक्फे वक्फे से ये खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जी इस फैमिली के अंदर ये वाकया हो गया, इस कम्युनिटी के अंदर ये वाकया हो गया। तो वो जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर चीज़ें होती हैं जो वहां तक पहुंचती हैं। तो आप यकजा रहें, एक दूसरे को हेल्प और सपोर्ट करें एज ए फैमिली, और मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी जो है ना एहसासात और औसान जो है ना कंट्रोल में रखें, और किसी भी जल्दबाजी की कोशिश ना करें, बल्कि सिचुएशन से निकल के सोल्यूशन की तरफ जाइए, ताकि जो है ना आपके पास एक देर पा हाल हो और आप अपनी अच्छी फैमिली लाइफ गुजार सकें, अच्छी एजुकेशनल लाइफ गुजार सकें। तो ये मुद्दे थे जो आज सारे कनाडा के मौजू पर बहस हैं, और इमिग्रेशन से लेके रीसेटलमेंट तक और हेल्थ से लेके जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर कैनेडियन ख्वाह वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो वो इन पे गौर फिक्र कर रहा है, परेशान है, और सबकी नजरें ज़ाहिर है गवर्नमेंट ही की तरफ जाती हैं कि इन मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं अपने जो लोगों से बड़ी वफादार होती हैं, बहुत ख्याल करती हैं, और कोई देर पर सोल्यूशन जो है ना उसका या अच्छा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, और जो है एक आध साल के बाद सूरत हाल बेहतर होने के बहुत इम्कान है।
1: बिल्कुल सर, और आप सबसे यही अगेन दरख्वास्त है कि आप इस मुसीबत का जो सामना है डटकर करें, और किसी भी तरह से अपने जो भाई बहन हैं या दोस्त हैं या बच्चे हैं, अगर वो इस पोजीशन में हैं तो उनको प्लीज साथ ना छोड़ें उनका, और उनके साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करें। आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम उलिया 94.7 FM पर। शकील भाई, तो मजा आया आज के प्रोग्राम में,
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई।
0: बिल्कुल, और जो है अब हम अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्तों से इजाजत चाहेंगे, और हमारी दुआ है कि भाई जो है ना ये जो भी यहाँ मसले मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल हों, और जो लोग एक ख्वाब लेके कनाडा आते हैं उनके

0: ਕਲਾਈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757
1: मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स
3: कैलगरी द टाइम इज 6 PM
4: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.